आए बुठ है घर माही, हर गुण गाए सदा त्रिपता सी, फिर भूख न लागै आए, दै दिस पूज होवै हर जन की, जो हर हर नाम ते आए, नानक हर आपे जोड़ बिछोड़ है।

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लेंते आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद नौ सिमराऊ, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस दिठे सब दुख जाए। एक बहादुर सिमर करनो निधि आवे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सब थाई हुए सहाय। दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। है नमाणिया दे माण सतगुर ने, ताणिया दे तान सतगुर ने, आसरिया दे आसरे तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी की चरण कमलों पास अरदास बेनती। सतगुरु जी आप जी ने अमृत वेले तो अपने तखत से प्रकाशमान होकर संगतान दर्शन दारी देखी निहाल किया है जी। इस वक्त दीवाना की समाप्ति तो उपरंत आप जी के स्वरूप की सेवा हुई है, गुरबाणी के पाठ हुए हैं। गुरबाणी के पाठ करदिया सेवा करदिया अनेक प्रकार दी गलतियां हो गई होंगे, बच्चे समझ के मुआफ करना। अगे तो सेवा करन दी गुरबाणी पढ़न दी समत बख्शिश करनी। आप अपने सुख आसन से विराजमान होवो, होइयां भुलां दी खिमा बख्शिश करनी सही प्यारे मेल। जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे, नानक नाम चढ़दे कराओ तेरे भाणे सरबत।

गारू सुखमनि सुख अमृत प्रभु नाम भक्त जन कर मन विश्राम रहाउ। प्रभु कह सिमरन गर्भ नाम बसै, प्रभु कह सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कह सिमरन काल पर हरै, प्रभु कह सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत काज विघ्न न लागै, प्रभु कह सिमरन अंत दिन जागै, प्रभु कह सिमरन भाउ नाम बे आपै, प्रभु कह सिमरन दुख नाम संतापै। प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौनिद, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बोधै। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु कै सिमरन दर गय मानी, प्रभु कै सिमरन होय सो भला, प्रभु कै सिमरन सो फल फाला। से सिमरा जिने आप सिमराय, नानक ता कह लागो पाई, प्रभु का सिमरन सब तय ऊंचा, प्रभु का सिमरन उदर मूचा, प्रभु का सिमरन तृष्णा बूझा, प्रभु का सिमरन सबके सूझा, प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माए समाए। प्रभु जी वसा साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से धनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोहताज, प्रभु को सिमरै से सर्व कै राज, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनासी। सिमरन ते लागे जिने आप जयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु को सिमरै से पर बुकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन अंध कनेरे, प्रभु को सिमरै वसै हर नेरी। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कब न झूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन निचले आसन, प्रभु कै सिमरन कमल वेगासन, प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरै से जन जन को प्रभु माया, नानक तन जन शरणी पाया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाई, हर सिमरन लग बे दो पाई, हर सिमरन पै सज्जती दाते, हर सिमरन नी चौंक कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगला कारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलो

अष्टपादी जय मात पिता सुतमीतना भाई जय महाभयान दूत जमदा लाए जय मुश्किल होवे हथ भारी अनक पुना चरण करत नहीं कराए गुरमुख नाम जपो मन मेरे सगल सरिट को राजा दुखिया ला करोरी बंधन पराए अनक माया रंग तिखना बुझावै ने मार गयो जात अकेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है छूट नहीं कोट लख वाहे

0: मिथ्यावास लेत विकार सफल दे नानक हर हर नाम ले साच बिना के होवत सूचा मुखावता के दुर्गंध
1: बिन सिमरन दिन नैन बिरथा बिहाय
0: मेघ बिना जो खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
0: योगे पंगे निरागत
1: धन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहत अवर कछि अवर कमावत
0: मनी प्रीत मुखो गन लावे
1: जानन हार प्रभु पर बीन
0: बाहर देख न काऊ पीन
1: अवर उपदेश आप न करे
0: आवत जावत जन्म मरे
1: जिसके अंतर बसे निरंकार
0: इसकी सीख करे संसार
1: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता
0: नानक रंजन चरण।

0: अमृत काहे,
1: तिसा गुरु को रख मन माहे,
0: प्रसाद सुगंध तन लावे,
1: जिसको सिमरत परम गत पावे,
0: ये प्रसाद बसे सुख मंदर,
1: जिसे ते आए सदा मन अंदर,
0: ये प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
1: आठ पहर सिमर हो तिस रसना,
0: ये प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा ते आइये ते आवण जोग,
0: प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे,
1: जिसे ते आकत अपर लुभावे,
0: प्रसाद सुख से सोई जे,
1: मन आठ पहर ता का जस गावी जय,
0: ये प्रसाद तो सबको माने,
1: मुखता को जस रसन बखाने,
0: प्रसाद तेरो रहता धर्म,
1: मन सदा ते आए केवल पार ब्रह्म,
0: जपत दर गह मन पावे,
1: नानक पसे ती कर जावे,
0: प्रसाद अरो कंचन देही,
1: लिवला वो तिस राम सनेही,
0: प्रसाद तेरा ओला रहत,
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
0: प्रसाद तेरे सगल छिदर ठाके,
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके,
0: प्रसाद तुझ को न पहुँचे,
1: मन सास सास सिमर हो प्रभ ऊंचे,
0: प्रसाद पाई दुर्लभ देहे,
1: नानक ताकी भगत करे,
0: प्रसाद भूखन पहरी जय,
1: मन ति सिमरत क्यों आलस की जय,
0: प्रसाद असब हस्त सवारी,
1: मन तिस प्रभ को कभू ना बिसारी,
0: प्रसाद बाग मिलख तना,
1: राख पर होए प्रभ अपने मना,
0: तेरी मन बनत बनाई,
1: उठत बैठ सत से ते आई,
0: से ते आई जो एक अलख
1: है, इहा उहा नानक तेरी रखे,
0: प्रसाद करे पुन बोधान,
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान,
0: प्रसाद तू आचार व्यवहारी,
1: तिस प्रभ को सा सास चितारी,
0: प्रसाद तेरे सुंदर रूप,
1: सो प्रभ सिमरो सदा नूप,
0: प्रसाद तेरी निकी जात,
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात,
0: प्रसाद तेरी पत रहे,
1: गुर प्रसाद नानक जस कह,
0: जय प्रसाद सुने करण नाद,
1: जय प्रसाद पे खै बिस्माद,
0: प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: प्रसाद हस कर चले,
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है,
0: प्रसाद परम गत पावे,
1: जय प्रसाद सुख सहज समाव है,
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो,
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो,
0: प्रसाद तू प्रगट संसार,
1: जिस प्रभ को मूल न मनो बिसार,
0: प्रसाद तेरा प्रताप,
1: रे मन मूर्त ताको जाप,
0: प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
1: तुसे जान मन सदा हजूरे,
0: प्रसाद तू पावे साच,
1: रे मन मेरे तू ता स्यों राच,
0: प्रसाद सब की गत होए,
1: नानक जाप जपे जप सोए,
0: आप जपाए जपे सो नाओ,
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ,
0: कृपा ते होए प्रगास,
1: प्रभु दया ते कमल विगास,
0: प्रसन्न विषय मन सोए,
1: प्रभु दया ते मति उत्तम होए,
0: करुण दान प्रभु तेरी मया,
1: आप हो

0: शास्त्र सत समान
1: ब्रह्म ज्ञानी कर नहीं अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मने अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
1: नानक जिन प्रवे आप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी के

0: ज्ञानी सदा सत जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अहं बोधते आगत
0: ब्रह्म ज्ञानी किमत परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी।

0: ज्ञानी कदस वड भागी पाई है।
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है।
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही।
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे।
0: ब्रह्म ज्ञानी को कौन जाने भेद।
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाए धाख्य।
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने।
1: ब्रह्म ज्ञानी जगत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पर कभी दाता।
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ।
1: ब्रह्म ज्ञानी का सभी

0: इस वैष्णव का निर्मल धर्म
1: फल की इच्छा नहीं बाचा
0: केवल भगत कीर्तन संग राचा
1: सिमरन गोपाल
0: सभी ऊपर होवत कृपाल
1: नाम जपावे
0: नानको।

0: ऐसा स्वरण तैसी उस माटी,
1: ऐसा मृत तैसी बिख खाटी,
0: ऐसा मन तैसा अभिमान,
1: ऐसा रंग तैसा राजान,
0: जो बताए साई जुगत,
1: नानक हो पुरख कहिए।

0: पर तीर्थवासी,
1: कई कोट ब्रह्म पर मैं उदासी,
0: कई कोट वेद के स्रोते,
1: कई कोट तो विसर होते,
0: कई कोट आत्म ध्यान तारे,
1: कई कोट कब का विचार है,
0: कई कोट नवतन नाम त्यावे,
1: नान करते का अंत न पावे,
0: कई कोट पर अभिमानी,
1: कई कोट अंध ज्ञानी,
0: कई कोट कीर्तन कठोर,
1: कई कोट पेगा तमने कोर,
0: कई कोट पर दर्द को हिरे,
1: कई कोट पर दुख न करे,
0: कई कोट माया श्रम माहे,
1: कई कोट पर देश पर माहे,
0: जित लावो तित लगना,
1: नाने करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे रस भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय,
1: कई कोट पाथर बैठने पर जाए,
0: कई कोट पवन पानी वे संतर,
1: कई कोट देश पू मंडल,
0: कई कोट सस्य सूखने खतर,
1: कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर,
0: सामग्री अपने सुतारे,
1: नानक जे जिस पावे तिस तिस निसार,
0: कई कोट राजस्थान सातक,
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र,
0: कई कोट की ये रतन समुद्र,
1: कई कोट नाना प्रकार जानत,
0: कई कोट की ये चिर जीवे,
1: कई कोट गिरी मेर स्वरण थीवे,
0: कई कोट जखे किनर पिसाच,
1: कई कोट भूत प्रे सु कर मेर गाच,
0: नेरे सबूते दूर,
1: नानक आप लिप्त रहे आप भरपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नर

0: लावे पंडित करे बखियान
1: कबु मोहतारी लावे ध्यान
0: कबु तत्तीरथ स्नान
1: कबु सिरसा रख मुख ज्ञान
0: कबु कीट हसत पतंग होई जिया
1: अनेक जोन पर मैं पर मिया
0: ना रूप जो स्वागी दिखावे
1: जो प्रभावे तिवे न चावे
0: जो दिस पावे सोई हो।

0: अंतर होए ज्ञान परगास
1: उस स्थान का नहीं विनाश
0: मंथन नामरते एक रंग
1: सदा बसे पर ब्रह्म के संग
0: जल में जल आए खटाना
1: क्यों ज्योति

0: आपस को कर्म अंत कहावे
1: मरे भोजन परमावे
0: तन भूम का जो करे गुमान
1: मूर्ख अंधा ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानकिया मुक्त आगे सुख पावे
0: तन

0: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान, कोट कर्म करे हो तारे, अनेक तपस्या करे अहंकार, अनेक जतन करे आत्म नहीं द्रवे, आपस को जो पला कहावे,
1: पलाई निकट ना आवे,
0: सर्व क्रिया जा

0: के दुखन आज जकट है,
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते हीन,
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान प्राष्ट होए,
0: कृपा कृपा जे करे,
1: नानक संसंग निंदक पी तरे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग ज्यो लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिगत जोन फिर माए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को छले,
0: संत के दुखन ते सब जाए,
1: संत के दुखन नीच निचाए,
0: संत दुखी का था को
1: नाए, नानक संत पावे तावे पीगत पाहे,
0: संत का निंदक महातसाई,
1: संत का निंदक खिंट कर न पाई,
0: संत का निंदक महाहत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राज तहीन,
1: संत का निंदक दुखिया अरदीन,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा अभिजोग,
0: निंदा दोख में दोख,
1: नानक संत पावे ता उसका पी हो मोख,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
0: दुखी को डाम लागे,
1: संत के दुखी को सब ते आगे,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा बेकारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे,
1: संत की दुख ना सुख ते डरे,
0: संत के दुखी को ना ही उठाओ,
1: नानक संत पावे ता ले मिलाए,
0: संत का दुखी अद बीच से टूटे,
1: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
0: संत के दुखी को उद्यान परमाइए,
1: संत का दुखी उज्जड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सास बिना मृतक की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किछ ना है,
1: आपण बीज आपे ही खाहे,
0: संत के दुखी को अवर न राखण हार,
1: नानक संत पावे ता ले ओ बार,
0: संत का दुखी इहो बिल लाए,
1: जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छूटे अकेला,
1: जो बुआर तिल खेत माहे दोहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहते,
1: संत का दुखी सद मिथिया कहत,
0: निंद का तुर ही पया,
1: नानक ज्योतिष पावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए,
0: संत के दुखी की पूजे नासा,
1: संत का दुखी उड़ चले निराशा,
0: संत के दुख ना त्रिष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: कीर्तना में ते कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सबकर तिसके हो करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: सत करो दिन रात,
1: जिसे त्यावो सास गिरास,
0: कछ वरते तिसका किया,
1: जैसा करे तैसा को थिया,
0: अपना खेल अब करने हार।

0: जिसके दिए रहे अकाए
1: बौन तिसना लागे आए
0: मारे रखे एक आप
1: माने कह किस नाही हाथ
0: जिसका हुक्म भूस खोए
1: जिसका नाम रा कंठ पर होए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
1: नानक बिगन लागे कोए
0: सत मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा सोहेला कर ले जियो
0: नैनो पेख ठाकुर का रंग
1: साध संग बिन से सब संग
0: चरण चलो मार्ग गोविंद
1: बड़े पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर कर्म सर्वन हर कथा
1: हर दरगह नानक उजल मथा
0: भागीते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाहे
0: राम नाम जो करे विचार
1: से तन अंत गणी संसार
0: अंतन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछाने
1: ये तुत की यो सो जी जाने
0: नाम संग जिसका मन मानिया
1: नानक तिन्हे निरंजन जानिया
0: प्रसाद अपन आप सुझे
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
0: संग हर हर जस कहत
1: सर्व रोग ते हर जन रहत
0: अंतन कीर्तन केवल बख्यान
1: ग्रस्त में सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जम की आशा
1: जिसकी कटिए जम की फासा
0: हर ब्रह्म की जिस मन भूख
1: नानक तिसे न लागे दुख
0: हर ब्रह्म मंत्रित आवे
1: सो संत सो एला नहीं डोलावे
0: प्रभ अपना कृपा करे
1: सो सेवा को किसते डरे
0: जैसा सा तैसा दिष्टाया
1: मैं आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजिया
1: गुर पर साध तात सब बुझिया
0: देखूं तो सब कुछ मूल
1: नानक सो सुखम सोई असूल
0: किसी जन में न किस मरे
1: आपन चलत आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आप सकल में आप
1: अनेक जोगत रच ताप यो ताप
0: अविनाशी नाही किछ खंड
1: तारण तारे ओ ब्रह्मांड
0: अनख अपेव पुरख प्रताप
1: आप जपाए त नानक जाप
0: प्रभ जाता सो शोभावंत
1: सकल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक
0: प्रभ के सेवक सकल उदाहरण
1: प्रभ के सेवक दुख बिसारण
0: आप में आपे मेल ले कृपाल
1: गुर का शब्द जपे निहाल
0: सेवा सोई लागे
1: जिसनो कृपा करे बड़ पागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तिन पुर को उत्तम कर मान
0: करे सो प्रभ के रंग
1: सदा सदा बसे हर संग
0: सुभाए होए सो होए
1: करने हार पछाने सोए
0: का किया जन्मीश लगाना
1: जैसा सा तैसा दृष्टाना
0: जिस माही समाए
1: वो सुख निदान उन्हों

0: जो गुर का शब्द मने असमण
1: पाखा नाव चर
0: प्राणी गुर चरण लगत ने सर
1: का दीपक पर
0: दर्शन दे एक मन होए बिगास
1: ध्यान में मार्ग पावे
0: जो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: संतन की बाचो दूर
0: नाने की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख का ए बिल लाइए
0: पुरवले के का लिखे आप आइए
1: सुख सुख प्रभ देवन हार।

0: रहो पूरण सब ठाए
1: नाना बित कर बनत बनाई
0: अपने कीमत आपे पाई
1: सब तिसके ठाओ
0: जप जप जीव है नानक हर नाओ
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आगास पताल
0: नाम के तारे सगल आकार
1: नाम के तारे पुरिये सब पवन
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के सांगुदरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सच्चा का सत स्थान
0: पुरख सत केवल प्रदान
1: सत सच्चा की बानी
0: सत पुरख सा माए समाणी
1: सत कर्म चा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे

0: सुरत सत सत जा सुनता नानक सत सत प्रभ सोए
1: स्वरूप हृदय जिन मान्या
0: करण करावन तिन मूल पछानिया
1: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया
0: सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: भय ते निरपव होए बसाना
0: भय ते निरपव होए बसाना जिस ते उपजा तिस माहे समाना
1: सत माहेले बसत गढ़ाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: भोजन हार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक के मन पर

0: स्थावर न होए,
1: सर्वजी आकार आखा सोए,
0: सोच करे रे प्राणी,
1: जपनान प्रव्याल कबिडाणी,
0: बार बार प्रभ जपिए,
1: पी अमृत हो मन तन त्रपिए,
0: राम रतन जिन गुरमुख पाया,
1: जिसके जे अवर नही दृष्ट आया,
0: राम तन नामो रूप रंग
1: नामो।

0: प्रावे अपने जन की नींदात
1: भगत आत्म के चाहे
0: प्रावे अपने सो रहे समाए
1: वाहो वत सो जाने
0: प्रावे अपने का हुकम पहचाने
1: की

0: के आवे सतगुर के पास तिस सेवा के कार्य रास
1: करत होए ने कामी
0: तिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवा गुर की मत ले
1: विश्वे
0: गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पर ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: एक है आप नहीं कच परम
1: ले आना जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: दर्शन पे खत पुनीत
0: पर सत्यान गत निर्मल रीत
1: पेटक संग्राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर बसन करण आगाहे
2: मन का

0: नहीं पाए,
1: नानक जिस पावे तिस लहे मिलाए,
0: एक उस्तत अनेक
1: सत पूर्ण भवेक,
0: बोलना पहुँचत प्राणी
1: अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी,
0: हार निर्वय सुखदाई
1: ताकि कीमत किने न पाई,
0: अनेक भगत पद बंधन नित करे,
1: चरण कमल हृदय सिमरे,
0: बलिहारी सतगुर अपने,
1: नानक जिस पर साध है सा प्रभ जपने,
0: हर रस पावे जन कोए,
1: अमृत पीवे अमर सो होए,
0: उस पुर काना ही कदे विनाश,
1: जाके मन पर टे गुण तास,
0: आन पहर हर का नाम ले,
1: सच दे सेवक दे,
0: ओ माया के संग न लेप,
1: मन में रखे हर हर एक,
0: दीपक पर गासे,
1: नानक परम हो दुख तहते नासे,
0: तपत माहे तद वर्ताई,
1: तपत माहे ठाट बरताई, अंध पया दुख नाठे पाई,
0: जन्म मरण के मिटे आदेश अंधे, पो चूका निरपो होए बसे,
1: सगल व्याध मन ते चैन नसे,
0: जिसका साथिन कृपा तारी,
1: साध संग जप नाम।

0: संचो हो वो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस रखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाहे
0: जिस तन को चार कुंठ उठतावे
1: सो तन हर से वाते पाव है
0: सुख को नित बाछे मीत
1: सो सुख साधु सांग परीत
0: सोभा को करे पलि करनी।

0: पवन मिटे प्रभु से
1: आपके आग शरण गुरुदेव
0: एहो रतन जनम का होए उधार
1: हर हर सिमर प्राण आधार
0: अनेक उपाव न छूटन हारे
1: सिमरत शास्त्र वेद विचारे
0: हर की भगत करो मन लाए
1: मन बंचत नानक।

0: करता सतपुरी
1: रावरहे आसल सांग हजूरी
0: जिसका साथ इंदिया मिलाए
1: नानक भक्ति नाम समाए
0: तो क्यों बिसरे जे काल न पाने
1: तो क्यों बिसरे जे किया जाने
0: तो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया
1: तो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
0: तो क्यों बिसरे जे अगन में राखे
1: गुर प्रसाद को बिरला लाख है
0: तो क्यों बिसरे जे बिखते काटे
1: जन्म जन्म का टूटा गाढ़े
0: गुर पूरे तत एह बुझाया
1: प्रवे अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो एह काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अवरह।

0: बरन चहन ना जापत
1: तब हर कसो को किसे बे आपत
0: आपन आप पार ब्रह्म
1: तब मो कहा किस हो बत परम
0: आपन खेल आप वर्ती जा
1: नान करने हार न दूजा
0: जब हो वत प्रभ केवल तनी
1: तब बांध मुगत को किसको गनी
0: जब एक है हर अगम अपार
1: तब नरक सुर को कौन तार
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए
1: तब शीर्ष गल को कठाए
0: जब आपे आप जब आपे आप अपनी जोत करे
1: तब कवन निडार कवन कत डरे
0: आपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम पार
0: अपना सी सुख आपन आसन
1: जनम मरण को कहा विनाशन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास को किस होए
0: जब अभिगत अगोचर प्रभ एका
1: तब चितर गोपद किस पूछत लेखा
0: तब नाथ निरंजन अगोचर अगादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: आपन आप ही अचर जा
1: नानक आपन रूप आप ही पर जा
0: जय निर्मल पुरक पुरक पथ होता
1: वह बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: वह कौन कमान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: वह शाल सिदर लगत को कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: वह किसे भूख कवन तृप्तावे
0: करन करा मन करने हान
1: नानक करते का नहीं सुमार
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई
0: जय सर्व कला आपे पर भी
1: वह वेद कतेव कहाँ को चीन
0: जब आपन आप उतार है
1: ओ सगन अप सगन कहाँ विचार है
0: जय आपन ऊंच आपन आप नेरा
1: वह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्मान
1: नानक अपनी गत जान हो आप
0: जय अचल अच्छेद अभेद समाया
1: ऊहा किसे बे आपत माया
0: आपस को आप पे आदेश
1: से गुण का नाही परवेश
0: एक एक एक भगवंता
1: वह कौन चिंत किस लागे चिंता
0: अपन आप पतियारा
1: वह कौन कथे कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंच।

0: दुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार कियो बखियान
0: आपन खेल आप कर देखे
1: खेल संकोचे तो नानक एक
0: जय अभिगत भगत
1: जय पसरे पासार संत परताप
0: रूपा का आपे तर।

0: कुछ होए
1: आपन सूत जगत परोए
0: जाको प्रभु जियो आप बुझाए
1: सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत्व का बेता
1: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता
0: जी जंतर सबता के हाथ
1: दयाल अनाथ को नाथ
0: जिस राख है तिस को ए न मारे
1: जिस मनो बिसारे
0: बिस्ता जी अवर कहा।

0: करते आए।
1: निरपा जपे सगल पा मिटे,
0: रब के पाते प्राणी छूटे।
1: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख,
0: नाम जपत मन हो वसुख।
1: चिंता जाए मिटे अहंकार,
0: जन को कोई न पहुँचन हान।
1: सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा,
0: नानक ताके कारज पूरा।
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट,
0: दर्शन देखत उदरत श्रेष्ठ।
1: चरण कमल जाके अनूप,
0: सुंदर हर रूप।
1: तन सेवा सेवक परवान,
0: अंतर जामी पुरुष प्रदान।

0: एकच कटमा है
1: अनेक रंग नाना देश चाहे
0: अमृत प्रभ का नाम
1: दे ही मैं इसका विश्राम
0: अनाथ
1: न जाइए चर्च विस्माद
0: देखिया जिस आप दिखाए
1: नानक देश जन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: कर कर व्याप रे आप भगवंत
0: माए आकाश प्याल
1: सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल
0: पर्वत है पर ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म चार कुंट दैद से समाहे
0: नहीं कोठाओ
1: गौर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: प्राण सिमरत में देख
1: शशि हर सूर्य कतर में एक
0: प्रभ की सबको बोले
1: आप डोल न कब हूँ डोल
0: सर्व कला कर खेल खेल।

0: संत जना कै हृदय सब धर्म सर्व व्यापी राम संग रचन सत बचन साधु सब कहत करण करावण हर प्रभ जाने नानक दर्शन देख सब मोही तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावे ता एक अंकार जाए मिलाए
1: निकट कवन कहिए दूर
0: आपे आपे आप भरपूर
1: जिस आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: भूत आप वरतारा
0: सर्व नैन आपे कण हारा
1: समग्री जाका तना
0: आपन जस आप ही सुना
1: आवन जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: के मद अल्पितो रहे
0: जो किच कहना सो आपे कहे
1: आज्ञावे आज्ञा जाए
0: नानक जा पावे ता ले समाए
1: ते होए सो नाही बुरा
0: उरे कहो किने कच करा
1: आप भला कर तू तसनी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साथ तारी सब साथ
0: पोत पोते अपन संग राच
1: गत मत कही न जाए
0: दूसर होए त सोजी पाए
1: का किया सब परवान
0: गुर प्रसाद नानक एहो जान
1: जाने ते सदा सुख होए
0: आप मिलाए लए प्रभ सोए
1: धनवंत कुलवंत प्रतिवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: धन धन धन जन आया
0: जिस पर सा सब जगत तराया।

0: होत निदान
1: सर्व इच्छाता की पूर्ण होए
0: नान पुरख प्रकट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: वरना होवे आपन जान
1: हर तन खाट

कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर पेर साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइयां कर शान सुख मनाए बसिया जिनी चा सब बुझाइयां सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जिस दियां ए बढ़ियां कहे नानक सुनो संतो शवा सरो पे आरो साचा नाम मेरा आधार बाजे पांच शव तित कर सुभागे कर सुभागे शव कला जित कर तारियम पांच दूत तुद वास कीते काल कंटक मार उतर पाया तुम जिनको से नाम के आगे कहे नानक तै सुखो पित कर आनंद।

सगल निस्तार अस्परि मिथ्या नाहि रचना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्र रूप न पेखै नित्र साधु टहल संग संग हेत कर्ण न सुन काहू किंदा सब ते जन आतिश को मंदा गुरु प्रसाद दुखिया पर हर मन की बासना मन ते तरह इंद्रिय जप पंच दोख से रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णव सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होए भिन्न कर्म करत हो लय निह कर्म तिस वैष्णव का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावै नानक हो वैष्णव परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला धर्म कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अर्पै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत पावै सो पंत जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म है सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंत कै उपदेश जग जीवै हर के कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमरत बुझै मूल सूखम है जान अस्तूल चौं वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उतार पस प्रेत मुग्ध पात्र को तार सर्व रोग का औपद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान काहू जुगत कितै न पाइय धर्म नानक बिस्मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा नित्य नित्य हर जान सो दास दर गह प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी दुख नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हर्ष तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं दियोग तैसा स्वर्ण कैसी उस माटी तैसा अमृत कैसी दिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त पार दम के सगले ठाओ जित जित घर रखै तैसा तिन नाओ आपे करम त्रावन जोग प्रभ पावै सोई पुन होग पसरो आप होए अंत तरंग

कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट चित्तम कठोर, कई कोट अपेजात मनकोर, कई कोट पर दर्भ कह है, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमा है, जित चित लाभ हो चित चित लगना, नानक करते की जाना करता रखना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पत्र बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी वह संतर, कई कोट देव भूमंडल, कई कोट शशिर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र से छत्र, सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस भाव तिस तिस निसार, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्थास्त्र, कई कोट किए रतन सुमध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण पीवे, कई कोट जग नृत साच, कई कोट भूत प्रेत शूकर मृगाच, सब ते निरह सब हुते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मरे, कई कोट बोजोनी करे, कई कोट बैस ही खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तय तह राखे, नानक सब किच प्रभ कह हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संत निंद विलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लांते, कई कोट दर्शन प्रत्यास, तिन को मिले प्रभ अविनाश, कई कोट मंद है सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट है अवतार, कई जोत कीनों विस्तार, कई बार पसर पसार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहु पात, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जान को, अपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रदास, कई कोट तक के देते, सदा निहारे एको नित्य, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सज समाव है, अपने जन को सास सास समारे, नानक हुए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण तक एक है दूसर नहीं को, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्परी, करण करावन करना जोग जो तिस पावे सोई होग, छिन में था पुथा पुनहारा अंत नहीं किस परावारा, हुक्मे तार अधर रहावे, हुक्मे उपजा हुक्म सुमावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अंतरंग प्रकार, कर कर दिखे अपनी वड्याई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ पावे मानक गत पावे, प्रभ पावे ता पात्र त्रावे, प्रभ पावे बिन सास तिरख है, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पत ते उधार है, आप करे आप विचार है, दुहा श्रिया का आप स्वामी, खेलै बिरसै अंतर जानी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर नावे, कहो मनुख ते क्या होया वै, जो तिस पावे सोई करावे, इस कै हाथ होए ता सब किचले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत दिखया मह बचै, जे जानत आपन आप बचै, परमे भूला दह दिसावे, निमख माही चार कुंठ फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, फिन मह नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जा का दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दुष्प्रगटावे, जा को अपनी करह बख्शीस, ता का लेखा न जने जगदीस, जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बंत आप बनाई, नानक जीव देव बधाई, इसका बाल नाही इस हाथ, कर्म करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बकरा जियो, जो तिस पावै सोई पुन थियो, कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हर रंग हसै, कबहू निंद चिंग व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत करै बहु पात, कबहू सोय रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो त्रवाल, कबहू होय भय बद राजा, कबहू भेखारी नीच का साजा, कबहू

0: सो इतनी सेवा प्रदान करनी। गुरबाणी का शब्द उच्चारण करद गुरबाणी शब्द कीर्तन करद एक दी अनेक प्रकार दियाँ गलतियां भुलां त्रुटियां रह जांदियां हन। संगत बख्शन योग है, सतगुर बख्शन हार हन। बख्श लैन छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी गुरगद्दी दिवस नूं समर्पित आप सारियां संगतां नूं लख लख वधाइयां होण जी। सतगुरु पातशाह महाराज कृपा करन सारियां संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण। दरो करो गुरसिखी सिदक नामदान भरोसा चढ़दियाँ कला बख्शिश कर गुरसिखी विच परपक होण दा बल उद्यम उत्साह बख्शिश कर। आओ गज के बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वडभागी हर संगत पावे भागहीन भ्रम चोटा खावे बिन भागा सत संग न लभे बिन संगत मैल भरिजे जियो। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सानू रस पिन कीर्तन नाल निहाल कर रहे सन भाई हरजिंदर सिंह जी अपने जथे नाल। भाई साहब का धन्यवाद। हुण सानू गुरबाणी विचार सरवण करवाणगे ज्ञानी कुलदीप सिंह जी। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिन्ना भी संगतां ने लंगर पानी छक लिया है दरबार हाज पहुँच के गुरु साहब दियाँ खुशियां प्राप्त करो। सत्य उत्तम हटकी कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। इनिया ही बेनतियां परवान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु साहिब जी।

जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी ओम वाहे गुरु। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा रखे आप अकाल पुरख अंतर जामी वाहे गुरु। ए निरंकार अपने पंथ दे सदा सहाई दाता जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया खुल दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शिश करो जी। ए नवाणिया दे माण सतगुर नीताणिया दे ताण सतगुर ने आसरियां दे आसरे हे अकाल पुरख सच्चे पिता वाहे गुरु जी आप जी दे चन कमलां पास अरदास बेनती अज धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी दे गुरतागत दी दिवस नूं मुख रखदिया होइआं सतगुरु जी आप जी दी हजूरी अंदर दीवान सजे सजे होए दीवाना अंदर गुरबाणी दे कीर्तन होए गुरमत विचारां होईआं पढ़ी सुनी बाणी साडे जीवां दे हिरदे वसावणी काम क्रोध लोभ अहंकार तों बचा के अमृत वेले जागणा नितनेम दी दात सेवा सिमरन दी दात बख्शिश करके सर्व संगतां नूं निहाल करना जी। दार घर दे सेवादार चरणां दे प्रीतवान भाई गुरचरण सिंह बावेजा इन्हां दी बेटी अमृता सिंह सारे ही परिवार वालों सतगुरु जी का शुकराना करते हुए बच्चे आरती सिंह अधीर सिंह बाजिंदर सिंह गुरजीत कौर माता कुलदीप कौर सारे ही परिवार वालों सतगुरु जी आप जी का शुकराना करते हुए आप जी की हजूरी अंदर पवित्र कड़ा प्रसादी देग सज के हाजिर हुई है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद साध संगत विच वरते जिन्हां पावनिया सहद आप जी दे परिवार ने सेवावां कीतियां हन सो पावनिया गुरमत अनुसार संपूर्ण करनिया चढ़दी कला दी दात बख्शिश करनी देसां परदेसां अंदर सहायता करनी कारोबारां विच तरक्कियां बख्शिश करनिया दर घर दे सेवादार भाई सुरजीत सिंह बीबी कुलदीप कौर परिवार वालों परिवार की चढ़ती कला वास्ते अरदास बेनती है जी। मुगल परिवार वालों चढ़ती कला वास्ते अरदास बेनती है जी। भाई अमरीक सिंह पटवालिया बीबी मनजीत कौर पटवालिया तिन्हां दा बेटा मलकीत सिंह पटवालिया सारे ही परिवार वालों चढ़ती कला वास्ते अरदास बेनती है जी। दर घर के सेवादार चरणां दे प्रीतवान भाई परमजीत सिंह जयदीप सिंह सारे ही परिवार वालों भाई सुशील कुमार चौधरी तिन्हां दी तंदुरुस्ती वास्ते अरदास बेनती जोजली करदे हुए सतगुरु जीओ कड़ा प्रसादी देग वास्ते रस्ता हाजिर होईआं सन सतगुरु आप कृपा करनी जिन्हां पावनियां सहित आप जी दे परिवार ने सेवावां कीतियां सो भावनियां गुरमत अनुसार संपूर्ण करनियां भाई साहब नूं सतगुरु जी चढ़ती कला की तंदुरुस्ती की दात बख्शिश करनी दर घर के सेवादार चरणां दे प्रीतवान भाई गुरदेव सिंह बीबी सुखविंदर कौर परिवार वालों चढ़ती कला वास्ते अरदास बेनती है जी। भाई ओंकार सिंह बीबी

कब हूँ तट तीर्थ स्नान, कब हूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कब हूँ कीट हस्त पतंग हुए जिया, अंत जोन पर न पर मिया, नाना रूप ज्यो स्वांगी लुखावे, ज्यो प्रभ पावे तिवे नचावे, ज्योतिष पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय, कब हूँ साध संगत पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन न मृत एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में है जल आए फटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए बिसराम, नानक प्रभ कै

0: नानक गर्व गलो हस्तपदे जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जन न जो बनवंत सो होवत विष्टाता जंत आप स्काओ कर्म वंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे धन भूम का जो कर अभिमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिस कहर दे गरीबी वसावे नानकी हां मुकुट आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कत संग न जावे बहु लश्कर मानक ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत तिन मह होए जाए भसमंत किसै न बद आत्मकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटा बिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हों तारे शरण पावे सगले बिरथाए अनक तपस्या करे अहंकार नाथ सुरग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह कौ कैसे गवै आपस कौ जो भला कहावे तिसे भलाई निक न आवै सर्व कीरे जाका मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही
1: कोई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह किसे दिया पता नहीं तापस है या वालिया है कि कहते ने इन किसी ने संगत मिलिया ने तो उन्होंने सानू दिया ने जे किसी दिया भी है तो आके ले सकता है वाहेगुरु जी का

संत का दुखन आर जात है, संत का दुखन जानते नहीं छुटे, संत का दुखन सुख सर जाए, संत का दुखन नर्क न पाए, संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत का दुखन कान त्रस्त होए, संत कृपाल कृपा ज कर, नानक संत संग निंदक पीतर, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन का दुखन काग जो लवे, संतन का दुखन सर्प जोन पाए, संत का दुखन त्रिगत जोन क्रमाए, संतन का दुखन तृष्णा न जलै, संत का दुखन सब को चले, संत का दुखन तेज सब जाए, संत का दुखन नीच नी जाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता कोई भी गत पाए, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खून चिकन ना पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राग ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख न दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुखते करे, संत के दुखी को नहीं ठाओ, नानक संत भावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अध बीच दे टूटे, संत का दुखी कितै कार न पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर से सोठा, जो सास बिना मृतक की लुथा, संत के दुखी की जड़ किछ ना है, अपन बीज आते ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत भावे ता लय उबार, संत का

रूप न रेख न रंग किछ त्रह गुण ते प्रद भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन है राख मानक की तू प्रीत त्याग इसते प्रय नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोय आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गंभीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कह मन कह नराओ मन सपूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र को तिसका मंत्र न जाने होर अनुरूप मंगल सब जाके सर्व थोक सुनिया है कर ताके राज महराज जोग मह जोगे तप मह तपी सरग्रस्त मह भोगे त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक किस पुरख का किना अंत न पाया जाके लीला की मित न है सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम ते आवे से त्यो गुण में जा पाओ परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक ज्ञान नाना रूप नाना जट रंग नाना देख करह एक रंग नाना बिर कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चल करे फिन माहे पूर रहे हो पूर्ण सब खाए नाना बिद कर बंत बनाए अपनी कीमत आपे पाए सब घट तिसके सब तिसके खाओ जब जब जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन्न ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम कै श्याम उदरे सुन सर्वन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब मान समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भले सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दै प्रवेश सत नित पूजा जकोय नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करण हार खबर न भूत कर्त विचार कर देख मित न जाने किया नानक ज्योत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद दिन बुझिया तिस्पाया स्वाद प्रब कै रंग रात जन रहे गुरु कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जां कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद।

सास सास स्मार, अपने जनका पर दत्तक, अपने सेवक की सर पर रख, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्र रख, ताकि गत मिथ

अंधकारो दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख सहते नासे, तप्त माहे ठान वर्ताए, अंध भया दुख नाते पाए, जन्म मरण के मिटे अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चूका निर्भौ हिवसे, सरल व्याध मन ते खै निसे, जिसका सतन कृपा धारी, साध संग जप नाम मरारी, तित पाई चूके प्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सरगुण थियो ही, कला तहार दिन सगली मोही, अपने चरित प्रभु आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर दिन रोजाना ही खोए, सर्व निरंतर एको सोए।

दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पाया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी रव रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किच दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न मह रख है गुर प्रसाद को बिरला लख है सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ है जन्म जन्म का टूटा गंढ है गुरपुरै तत् है बुधाया प्रभ अपना नानक जन चाया साजन संप्रो यो काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो अवर है नाम जपाव हो भगत पाए त्रिया संसार बिन भक्ति तन हो सी छार सर्व कल्याण सुख निधनाम बूढ़त जात पाए विश्राम सकल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर इही सुआओ नेत्र पेख दर्श सुख होय मन बिकसै साध चरण धोए भक्त जना कह मन तन रंग बिरला को पावै संग एक वस्त दीजै करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्संग दीन दयाल भगत वत्सल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्दयाल नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निन खा के गुण गाए अंतराज भोग बढ़ियाए हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कपर संगीत रसना जपती हर हर नीत

बृहस्पति जब अपार जो कचना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध किस समात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्क शोक कोप से व्याप्त जब अपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम अपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत तब केवल तनी तब बंध मुक्त कहो किस को गनी जब एक कह हर अर्ण पार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज स्वभाय तब शिव सत्य कहो कितराय जब आप है आप अपनी ज्योत धरे तब कवन निड्र कवन कत डरे अपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अर्ण अपार अब नासी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ बिनासन जब पूर्ण कर्ता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन पवमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल सिद्र लगत कहो कीस यह ज्योत स्वरूप के ज्योत संग समावै तह किस भूप कवन तृप्तावै करण करावन करण हार नानक करते का नाही सुमार जब आपन शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद पिते कहाँ पहुचीन जब आपन आप उतारे तो सगन अपसगन कहाँ विचारे जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठकर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हुआ आप जह अचल अशेर अभेद समाया उहां किस व्यापक माया आप स्व आप है आदेश त्यो उनका नाही प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच के ऊंचा नानक आप स्व आप है प्रभुचा जय आप रचयो प्रपंच अकार तेह गुण में तीनों विस्तार पाप पुन कह पाई कहावत को नर्क को स्वर्ग।

मेल आप कर देखा फिर संकोच है तो नानक एक है जह अवगत भगत जह आप जह पसरा पासार संत प्रताप दोहों पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हें बनी आप है कौतुक कर आनंद जोग आप है रस भोगन निर्जोग जिस भाव है तिस आपन नाय लावे जिस भाव है तिस खेल खिलावे बेशुमार अथाह अगंत अतोले ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एक को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथा आप सुनने हार आप है एक आप विस्तार जंत पावे तं सृष्ट उपाय अपने पाने ले समाये तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जग परोए जा को प्रभु जीव आप बुझाए सत नाम सोई जन पाए सो संदर्शी तक का बेटा नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंतर सवता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विसारे तिस ताजावर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जन हो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जी अनुभव पात जो जो रचो सत सहत्यात जिस भाव है तिस लय मिलाए भगत करहे हर के गुण गाए मन पर विश्वास कर मानिया करनहार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न वृत्ति जाए सेवक कौ सेवा बन आए हुक्म बूझ परम पद पाए इसके ऊपर नहीं विचार जहाँ कै मन बसया निरंकार बंधन तोड़ पे निर्वैर अंधन पूजे गुरु के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आते मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभु परमानंद राम नाम तट करो विचार दुर्लभ देह का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण कर्म का यह सुहाओ आठ पहर प्रभ देखो नेरा मिटे अज्ञान दिन से अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसाव हो मन दिते नानक फल पाओ हो हलत पलत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिख्या जिस मन बस है तिस साथ प्रीख्या मन तन नाम जपहो लिवलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दर्द है निर्भय केप तुम्हारे एकाटेक रखो मन माहे नानक बहर न आवह जाहे तिसते दूर कहाँ को जाए उभरा राखन हार के आए ने पाओ जपै सब पाओ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राख किस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार इस जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर था ठा गुरसूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पे थत उदृत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पर प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल साकै निकन आवत काल अमर भये अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया।

शांत मन पर गौस अष्टपदी संत संग अंतर तब लिखा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्पट माहे अनक रंग नाना दिष्टा है नौ निद अमृत प्रभ का नाम देहि मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कह न जाई अचर्ज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोझ ही पाए सो अंतर सो बाहर अनंत पट पट व्याप रहया भगवंत धर्म है आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसे आज्ञा तैसा कर्म औन पानी दर्शन तरमाहे चार कुंत बह दिशे समाहे तिसते तिन नहीं पोथाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख शशि सूर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभु की सब को बोला आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाई है गुण अमोल सर्व ज्योत में जाती ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक जन में एहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सब व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्म करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर ती ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै तां करे विस्तार तिस भावै तां एक अंकार अंक कला लखी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन मित कवन कही अधूर आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक जिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वर्तारा सर्व नैन आप ते सुनहारा सगल समग्री जाता तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप्त रह जो कुछ कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए इससे होए सो ना ही बुरा और कहो किने कछ करा आप भला करतूत अपनी की आपे जाने अपने जी की आप साथ तारी सब साथ ओत पोत आपन संगराज ताकि गत मित कहीं न जाए दूसर होए तसो जी पाए इसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक कह जान जो जाने इस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन धन बनाया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का एह सुआओ जन के संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म नित कर पेख सास सास मृह गोविंद मन अंतर की उत्तर चिंद आस नित त्याग हो तरंग संत जना की तू मन मंग आप छोड़ बेनती प्रहो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पार लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग पद परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल ए रत्न संत कुमावत होत उधार आप रह लोक रह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकर मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अंत करे प्रभगाजय प्रगटे गोपाल महान कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकार दे रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभारी नानक निधि खेप हमारी प्रभ की उस्तत प्रभु संत मीत सावधान एकाग्र तीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहु न होवे अवन जान हर धन खाट तलै जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए
ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਨ ਸਿੱਧ ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਯੋਗ ਤਪ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਭ ਕੈ ਮਦ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤਕਾ ਵੇਤਾ ਸੰਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਧਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਵਖਾਣੀ ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ ਜਾਂ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਨੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਹਿ ਸਮਾਣੀ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਏ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

संसों प्रीत बलुआ के ग्रह पितर वसाय अंध केल माया रंग रसाय दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर बरो काम करोग मोह झूठ बिकार महान लोभ त्रोय ए आहू जुगत बेहाने कई जानम नानक राख लियो अपन कर करम तू ठाकुर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सोख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समगरी तुमरा सूत्र धारी तुम ते होए सुआग्यकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक आए दिन हार प्रभ छोड़ कह लग गए आन सो आए नानक कहू न सी जई बैण नावै पत जाए अस्पदी दास वस्तु ले पाछ पावै एक बस कारण बखोट गुआवै एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा को कहा करे जे साकर से ना ही चारा तंकू कीजै सद नमस्कारा जंक मन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहू मन बुठा जिस जाने अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तिन पाया गण दसाओ अपनी दे रास खात पीत बरतै अंदोलास अपनी अमान किस बौर साले अज्ञानी मन रूस करे अपनी प्रतीत आप एक होवे बौर उसका विश्वास ना होवे जिसकी वस्त से आज्ञा रख है प्रभ की आज्ञा मन माथ है उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होवत जान अनेक बिरख छाया सो रंग लावे ऊ बिन सह मन पछतावे जो दिसै सो चालन हार लपटर उत अंधार बटाऊ सो जो लावे ने ताकू हाथ न आवे के मन हर कै नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई मिथिया तन धन कुटुंब सो आया।

क्या रंग संग माया भेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अपमान मिथ्या आप से ऊपर करत गुमान अस्त्र भक्त साध की शरण नानक जाप जाप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्व को हेरा मिथ्या नेत्र पेखद पर तिर रोपाद मिथ्या रसन भोजन अन सवाद मिथ्या चन पर बकार को धावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन पर पुकारा मिथ्या वासलित बेकारा बैना बूझै मिथ्या सब भय सफल दे है नानक हर हर नाम लय मृति साकद की यार जा साच बिना कह हो तो सूचा बिरथा नाम बिना तने अंध मुकाव तंकै दुर्गन लय बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों कृपन कह निरार्थ धाम तन तन तेजन जैंकट बस्यू हर नाऊ नानक तां कह बल बल जाऊ रहत अवर कश अवर कमाव तुम।

जावत जन्मे मराए, जिसके अंतर वसै निरंकार तिसकी सीख तर संसार, जो तुम भाने तिन प्रवजाता नानकुन जन चन पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने आपे आप, आप करत नवेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा।

मुखौ नमख जप नानक हरि सलोकाय काम क्रोध हर लोभ मोह बिनस जाय अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव वाचपादी।

आवाज जे प्रसाद बसै सुख मंदिर तसै तिहाई सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तसरसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाई ध्यावन जोग आए जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तसे त्याग कत्यवल लुभावै जे प्रसाद सुखसे सोई जय मन आठ पैर तांका जस गावी जय जे प्रसाद तो सबको मान मुक्ता को जास रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता तारु मन सदा ते आए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दर गए मान पावे नानक पत से थी कर जावे जे प्रसाद रू कंचन दही लुलाव तस राम सन ही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत तो मान सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरा सगल सिदर ठाक मन सरनी पर ठाकर प्रभु ता कह जे प्रसाद तुझको ना पाहो चय मन सा सा सिमरो प्रभु चय जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ता की भगत करे जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरद क्यों आलस की जय जे प्रसाद असब हस्त सवारी मन तस प्रभ को कबू न विसारी जे प्रसाद बाग मलक धना राग प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन मंत बनाई उठ बैठ सत सत्याई तिसे त्याई जे का लखाइया नानक तेरी रखा जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चतारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा नूप है जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पतर है गुर प्रसाद नानक जास कह जे प्रसाद सुने करणनाद जे प्रसाद बिकै बिस्मार जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागू गुर प्रसाद नानक मन जागू जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनु विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त का को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरी जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सोरा जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जप जब सोए आप जपाए जपै सो नाम आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हो प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोई प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वंधान प्रभु तेरी माया पो कछु न किन्हू लाया जित जित लाभ तित लगई हर नाथ मान किन कै कछु न हाथ सलोक अगाम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की अचार्य कथा आष्ट पदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटै अभमान साध के संग प्रगट सो ज्ञान साध के संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरना कौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुलै साध के संग आवे बस पंचाय साध संग अमृत रस पंचाय साध संग होए सबकी रेण साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हुंता आवे साध संग अस्तत मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग मान पुनीत आय साध संग के सुन बैर साध के संग न बेगा पैर साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंद आय साध के संग नाही हो ताप साध के संग तजै सवे आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबू कावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग बसता गोचर लहै साधु के संग अजर सहै साध के संग बसै थान उचै साधु के संग मैल पहुचै साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के से संग केवल पार ब्रह्म
साधक संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावे, जिस तंते सब को बरसावे। साध संग धर्म राय कर सेवा, साधक संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साधक संग नहीं किसी काल, दर्शन भेट होत निहाल। साधक संग कुलोक हरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग निबरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिदवसै, नानक उतरै साध सुन रसै। साधक संग सुनु हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ। साधक संग नमन ते विसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगै परम मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा। साध संग बै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी। साधक संग मिटै सब रोग, नानक साध पेटै संजोग। साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता वखियानै। साध की उपमा तेहु गुण तै दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा उच्च तै ऊंची, साध की शोभा मोच तै मोची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। सलोक आए मन साचा मुख साचा, सोई अवर न पेखै एक बिन कोई। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला ले। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व का सुख है। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जेक जुम्ब सुध, हटो खुद कौ चंदन ले पाए।

ब्रह्मज्ञानी कह मन होए परगा जैसे तरु ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्मज्ञानी कह नाही अभमान ब्रह्मज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सबते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रव्याप करी ब्रह्मज्ञानी सकल की रीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब परमया ब्रह्मज्ञानी ते किस बुरा ना पाया ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृतवर्षी ब्रह्मज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल योग्यता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक उपरयास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्मज्ञानी पर पकार उमाह ब्रह्मज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्मज्ञानी कह हो सुफला ब्रह्मज्ञानी सुफल फाला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदारी नानक ब्रह्मज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्मज्ञानी कह कह रंग ब्रह्मज्ञानी कह बस प्रभु संग ब्रह्मज्ञानी कह नाम उदार ब्रह्मज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्मज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी कह कर सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्मज्ञानी एक संगहिता ब्रह्मज्ञानी कह हुए अचंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रवेया ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्मज्ञानी को खोजै महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी या परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्मज्ञानी कह सकल मन माही ब्रह्मज्ञानी का कौन जान भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा देश ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाए अदे आकर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी कीमित कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्मज्ञानी सब जीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुग जुग जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।

नानक रूप बिकराल कबहू सब केहो तरवाल। कबहू होय बह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू अब कीर्त में आवे कबहू पला पला कहाँ आवे। ज्यो प्रभु राखै तब ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होय पंडित करै बखयान कबहू मौन धारी लावै ध्यान। कबहू तर तीर्थ इशनान कबहू सिद्ध साधक मुख गयान कबहू कीट हस्त पतंग होय जी आन के जौन परमै परम ही आए।

मंत्र होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश। मंथन नाम रताय करंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल में जल आए कटाना त्यो ज्योति संग जो समाना। मिड गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सब कुरबान। श्लोक है सुखी वसै मशकीनिया है आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपादी। जिसका अंतर राज अभमान सो नरक पाती हो सवान। जो जान मैं जोबन बंत सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्म बंद कहावै जन्म मरै बौजून परमावै। तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान। कर कृपा जिसका हृदय गरीबी वसावै। नानक इहां मुक्त आज्ञा सुख पावै धनवंता होई कर गरवावै। तिरण समान कछ संग न जावै बौ लश्कुर मान कूपुर करें आस। पल पीतर तांका होई बिनास। सब ते आप जाने बलवंत खिन में होई जाए पसमंत। किसन बदय आप अहंकारी तन मराए तिस करें खोवारी। गुरु प्रसाद जाका मिटै अभमान सो जन नानक दरगे परवान। कूट कर्म करें हो धारी श्रम पावै सगल बरथारी। अनक तपस्या करै अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतारी। अनक जतन करे आत्म निंद्र वै हर दर गै को क्या से गावै। आपस कहो जो भला कहावै तसे भलाई निकट ना आवै। सर्व किरे जा का मन होए कहो नानक ता की निर्मल सोई। जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाई कोई। जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्व जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मी तब लगने चलना ही चीता। जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हों छूटै। सहस कटे लाको उठतावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिखिया के करै नै तृप्तावै खाप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राज जे सुपन मन औरत बिरथ है सब का। जे नाम रंग सर्व सुको आय बड भागी किसे प्राप्त होई। करन करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। करन करावण करने हार इस कई हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा हुई आपे आप आप प्रभु सोई। जो कृष्ण किन्नो सो अपने रंग सब तै दूर सब हूं कह संग। बूझा देख करे बबी का आपे अनेक मरे न बिन सह आवे न जाए। नानक सद ही रह समाए आप बदे सह समझे आप। आपे रचया सब कह साथ आप किनो अपन विस्तार। सब किश उसका ओ करने हार। उसके पिन कहो किश होई थान थन तरे कह सोई। अपने चिलते आप करने हार कौत कर रंग पार। मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए। सात सात सत प्रभु स्वामी गुरप्रसाद किने बखयानी। सच सच सच सब कीना कोट मदै किन बिरलै चीना। भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप। निर्मला निर्मल निर्मल तेरी बाणी कटकट सुनी श्रवण वखयाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक। संत शरण जो जन पर है सो जन उधरन हार। संत की निंदा नानका बौर बौर अवतार अष्टपादी। संत का दुखन यार जकट है संत का दुखन जमते नहीं छुट है। संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक में पाए। संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन शोभा ते हीन। संत का हते को रखे न कोई संत का दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भी तरै। संत कै दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जून लवै। संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन तिरगल जोन करमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब कुशलै। संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीचन चाए। संतो की कथा को नाही नानक संत पावै तौई पी गत पाही। संत का निंदक महा तताई संत का निंदक खिंटकन पाई। संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा।
संत का निंदक राज हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत का निंदक को सर्व रोग, संत का निंदक को सदा बेजोग। संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भाव है तो उसका भी होए मोख है। संत का दुखी सदा पवैतहु, संत का दुखी किसे का नहीं मैतहु, संत का दुखी कौ डान लागे, संत का दुखी कौ सब त्यागे। संत का दुखी महा हंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन में मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत का दुखी को ना ही ठाऊ, नानक संत पावे तन लई मिलाई। संत का दुखी अद बी ते टूट, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे, संत का दुखी कौ दयान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते ठोठा, जो सास बिना मृत की लोथा, संत का दुखी की जड़ किश नाही, अपन बीजा पै खाए, संत का दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तन लै उबारी। संत का दुखी ओ बिल लाए, जो जल बेहून मछली तड़ फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाव की दिन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, जो बुआड़ तिल खेत माहे दो हिला। संत का दुखी धर्म तेरह, संत का दुखी सदमितिया कह, तु किरत नंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थे। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत का दुखी की पूजा नयासा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होई, पया कीर्तन मिटै कोई, नानक जान सच्चा सोई। साव कर तिसके ओ करन हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तद करो दिन रात, तिस त्याव सास ग्रास, सब किछु वरत तिसका किया, जैसा करी तैसा कोठिया। अपना खेल आप करन हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़पागी, नानक जन से श्लोक है। तजो से आन पसर्जनो सिमरु हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानो की टेक बिरति सब जान, देवन कहो कै भगवान, जिसके दिया रहे अगाए बहुनत।

आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता पूजन हर को सत सब होई नानक सत सत प्रभ सोई सत स्वरूप हृदय जनमाने कन करा वंचन मूल पछाने जा कह हृदय विश्वास प्रवे आया तत् ज्ञान तस्मन प्रगटाया पैते निरपव होए वसाना जिस ते उपजया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गढ़ाई ताको भिन न कहन जाई बूजै बूजन हार बबेक नारायण मिलै नानक एक आई ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर का सेवक कै मन प्रतीत ठाकर का सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जानै संग प्रभु का सेवक।

तिसका गुण कह एक न जानो हाड़ पैर प्रभ वसै जूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरा तिनकी ओट लेह मन तने अपना तिन जन देह जिंजन अपना प्रभु पिछाता सूजन सर्व थूक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावै तिसके दर्श सब पाप मिटावै।

लोग भरम गया इच पुन्नी शरदा सब पूरी रव रहा सत्संग हजूरी इसका साथन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों विसरै जे काल न भानै सो क्यों विसरै जे किया जानै सो क्यों विसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों विसरै जे जीवन जिया सो क्यों विसरै

राष्ट्रपति जी, आप कथा है, आप सुनने हार, आप ही का विस्तार जंत भाव है, ता सृष्टि उपाय अपने भाने लय समाए, तुम ते भिन्न नहीं किछ होई, आपन सूत सब जगत पर होई, जाको प्रभु जी आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सूक्ष्म दर्शी तत्का बीता, नान सकल सृष्टि का जीता, जी जंतर सब ता कहीं हाथ दीन दयाल, अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मूआ जिस मनु बिसारे, तेस ताजे अवर कहाँ को जाए, सब शरीर

आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी किन्नी माया, सब कह मद अदब चोरा है, जो किस कहना सो आपे कह, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तन ले समाए, इसते होए सुना ही बुरा, उरै कह हो किने कछ करा, आप भला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साज तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराज, ताकि गतमत कहीं न जा।

पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर की तरह चिंद, आस अनित तेरा गोतरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करूं,

सहजानंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जीओ गुण गोबिंद अमृत रस पीओ चित चितवेओ नारायण एक एक रूप जं कै रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल मुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ये आधार उत्तम सलोक साध कै बचन अमलीक लाल ए है रतन सुनत कुमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जं कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन अनंद करै प्रभ गाजे प्रगटै गोपाल महांत कै माथे

की पीर पछाण कट कट के पट पट की जानना जबद कर करा करतारा परज तरत तब दे अपारा जब या कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे धार साब हूँ जेते बदन।

करो। दोष जिता उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण घाता। जे आसो तब सरनी पारे तिनकह दोष दोग तो हवा मारे।

तो इतनी सेवा प्रवान करनी। उस विछड़ी हुई आत्मा नूं साडे वल्लों साडे जत्थे वल्लों यही सच्ची ते सुची श्रद्धांजलि है कि सतगुरु पातशाह महाराज उस विछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरणों के विच निवास आत्मा नूं सुख शांति पिछों परिवार नूं भाणा मनण का बल बख्शिश करन। आओ साडे तो उपरंत अति सत्कार जो ज्ञानी जी भाई कुलदीप सिंह जी आप संगतां नूं गुर शब्द विचार दे नाल जोड़नगे। आओ उन्हां पासों वार्ता श्रवण करिए। गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बारह बरस बालपन बीते, बीस वर्ष कश तपना कियो, तीस वर्ष कश देव न पूजा,

जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं माया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बानी, भज ले रे मन सारग पानी। अब न भजस, भजस कब पाई।